0: वक्त के मुताबिक शाम के 5:30, और बांग्लादेश के वक्त के मुताबिक शाम के 6 बजे।
1: सामने इनिशियत को शॉर्ट वेव 16 मीटर बैंड 17,580 किलोहर्ट्ज के अलावा 63 ईस्ट 4 वेस्ट में हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं।
0: आज हमारे प्रोग्राम में अलग तरतीब खबरें होंगी, उसके बाद सिलसिलेवार प्रोग्राम फिलिस्तीन की तारीख और पस पर्दा कहानियाँ और फीचर पेश किए जाएंगे।
1: हमारा प्रोग्राम हसब मामूल 1 घंटे तक जारी रहेगा। आज आपके मेजबान हैं इमरान ओपल
0: और सगीर अहमद।

0: ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: ब्राजील अखबार फोला दी एस पाउल की रिपोर्ट के मुताबिक क्यूबा के सदर मिगुएल डियास खाने ने कहा अमरीका के साथ मुसाकरा जमूत का शिकार है, इसके लिए कोई एजेंडा तय नहीं, जबकि उन्होंने क्यूबा के माशी तबाही के दहाने पर होने के दावों को मुस्तरद कर दिया। डियास खाने ने कहा बातचीत की ख्वाहिश मौजूद है, हमारी हुकूमत के हुकाम ने अमरीकी हुकूमत से मुलाकातें की हैं, लेकिन ताहाल आगे बढ़ना मुमकिन नहीं बन सका। उन्होंने कहा क्यूबा वाशिंगटन के साथ बातचीत का रास्ता कायम करने का ख्वाह है, लेकिन दबाव के हालात ने मुज़ाकरात को मुस्तरद करता है। उन्होंने मजीद कहा दबाव के तहत बातचीत नहीं हो सकती। डियास खाने ने ट्रंप इंतजामी पर इल्जाम आयद किया वो क्यूबा का माशी तौर पर गला घूंट रहे हैं और एक ऐसे समाजी बहरान को हवा देने की कोशिश में हैं जो क्यूबा के इंकलाब की तबाही का सबब बने। ईंधन बिजली खुराक अद्वियात की किल्लत के बावजूद इस दावे को मुस्तरद कर दिया कि मुल्क तबाही के दहाने पर है। उन्होंने कहा मुल्क को पचीदा सूरत हाल में पाते हैं, लेकिन सूरत हाल क्यूबा के अवाम की जबरदस्त तहकली की सलाहियतों और तारीखी साबित कदमी की अक्कास है।
2: इंडोनेशिया के इलाके फ्लोरेस में आने वाले शदीद जिलजिले में जानी और माली नुकसान की शरह मुसलसल बढ़ रही है। 15 अगस्त को रिकॉर्ड किए गए 7.7 शिद्दत के जिलजिले में हलाक होने वाले अफराद की तादाद बढ़कर 103 हो गई। इस आफत में 1,666 अफराद के जख्मी होने की भी तस्दीक की गई है। जिलजिले के बाद 2,700 से ज़्यादा इरतआशात रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, जिनमें सबसे बड़ा 6.2 शिद्दत का था। इलाके में तौदे गिरने के बायस तकरीबन 700 किलोमीटर तवील शाहराह के कई हिस्से आमदोरफ्त के लिए बंद हो गए। तबाही फैलाने वाले इस जिलजिले में 900 से ज्यादा मकानात मुकम्मल तौर पर गिर गए हैं, जबकि 1,300 से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा है। अपने घरों से महरूम होने वाले तकरीबन 5,000 अफराद को आर्जी पनागाहों में मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि तलाश बचाव और इमदादी सरगर्मियां बदस्तूर जारी हैं।
1: बांग्लादेश के कैंपों में मकीम हजारों की तादाद में रोहिंग्या मुसलमानों ने 9 साल पेशतर जुल्म और सितम से फरार होकर आने वाले म्यांमार की जानब महफूज वापसी का मुतालबा करते हुए मुजाहरा किया। म्यांमार में अरकान मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद जुल्म और सितम के आगाज की नवी बरसी के मौके पर बांग्लादेश के कैंपों में मकीम हजारों अफराद ने कोकस बाजार के इलाके में एहतजाज किया। मुजाहरीन ने बैन कौमी बरादरी से मुतालबा किया इनके लिए म्यांमार के अरकान सूबे को महफूज तरीके से वापस जाने का इहतमाम किया जाए। दूसरे बरतानिया, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, जापान, कोसोवा, हॉलैंड, नॉर्वे, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड के बांग्लादेश के दारकुमन दाखिल मुजफ्फर खानों ने रोहिंग्या मुसलमानों की सूरतहाल के बारे में एक मुश्तरक बयान जारी किया। बयान में कहा गया कि अरकान में इंसानी इमदाद की जरूरत बढ़ चुकी है, शहरी बुनियादी ढांचे पर फजाई हमले जारी हैं और सूरतहाल तशवीशनाक है। इस बात पर जोर दिया गया कि अरकान के मुसलमानों को म्यांमार वापस जाने का हक हासिल है। मलेशिया सियासतमंद अनवर इब्राहिम ने जुलाई में कहा था म्यांमार पहले रोहिंग्या मुसलमानों को कबूल करने में रगबत नहीं रखता था, मगर दोनों ममालिक के दरमियान अच्छे ताल्लुकात की बदौलत इस मामले पर इत्तफाक हो गया है। अनवर ने बताया नेपोतो इंतजामिया इब्तदाई मरहले में मलेशिया मौजूद तकरीबन 5,000 रोहिंग्या मुसलमानों की वापसी कबूल करेगी,

सामिन, हमने वाकई वक्त को कब महसूस किया? जब हमारे पास घड़ियां और कैलेंडर नहीं थे तो इंसान को कैसे मालूम होता था कि एक दिन गुजर गया है? सूरज के तुलू होने से, साय के तूल से, या पहली बारिश से, मिट्टी की महक और शाख पर जैतून के पकने से, इंसान ने पहले वक्त को नापना नहीं बल्कि फितरत और अपनी ज़िंदगी में पढ़ना सीखा। आज हम फ़लस्तीन की सरजमीन पर वक्त की ज़बान को समझने वालों के नक्श कदम तलाश करेंगे। हम शमसी घड़ियों से कदीम ज़रई कैलेंडरों तक और अलकुद्स के मुवक्कितीन से लेकर उस्मानी दौर के क्लॉक टावर तक का सफ़र करेंगे। किसी तहजीब का वक्त नापने का तरीक़ा कायनात और इंसान को समझने के उसके अंदाज को भी जाहिर करता है। जिस दौर में घड़ियाँ मौजूद नहीं थीं, उस वक्त किसी मुलाकात या बुवाई का वक्त तय करने के लिए आँखें आसमां की तरफ उठ जाती थीं। सूरज के ऊपर चढ़ने के साथ छोटा होता और दोपहर के बाद दोबारा लंबा होता हुआ साया इंसान का पहला रहनुमा था। कदीम फिलिस्तीन के जुग्राफिये में रूमी और बाज़ंतीनी अदवार से बच जाने वाली पत्थर की शमसी घड़ियां इस तलाश के ठोस सबूत हैं। पत्थर पर खींची गई चंद सादा लकीरें आसमां की बहुत बड़ी हरकत को ज़मीन पर मुनक्कस करती थीं। एक ज़माने में लोग घड़ी को नहीं बल्कि बराह रास्त साय को देखते थे। ताहम वक्त सिर्फ घंटों और मिनटों का नाम नहीं था। एक किसान के लिए वक्त का मतलब बराह रास्त बका था। बारिश कब होगी, ज़मीन में हल कब चलाया जाएगा और जैतून कब तोड़े जाएंगे, ये सब इंतहाई अहम था। इसीलिए फ़लस्तीन की कदीम ज़रई सकाफत में कैलेंडर कागज़ पर लिखी हुई किसी फहरिस्त के बजाय ज़मीन का अपना हाफिज़ा था। साल 1908 में कदीम जज़र बस्ती में की गई खुदाई के दौरान क़ब्ल अज़ मसीह 10वीं सदी की एक छोटी चूना पत्थर की तख्ती मिली। आज जज़र कैलेंडर के नाम से जानी जाने वाली ये तहरीर जाहिर करती है कि वक्त को तजरीदी आदात से नहीं बल्कि बराह रास्त ज़रई कामों से नापा जाता था। इस पत्थर पर महीनों को अंगूर तोड़ने, बुवाई और जौ की कटाई जैसे कामों के नामों से याद किया जाता था। तकरीबन 3000 साल पुराना वक्त का ये रिकॉर्ड इस जुग्राफी में ये जाहिर करने वाले कदीम तरीन दस्तावेजात में से एक है कि वक्त को ज़मीन की रफ्तार के साथ कैसे जोड़ा गया था। इस मकाम पर एक मानी खेज रिश्ता सामने आता है। फिलिस्तीन की सरजमीन पर आज तक पहुंचने वाले कदीम तरीन तहरीरी रिकॉर्ड में से एक आज इस्तांबुल के आसार कदीमा के अजायब घर में महफूज है। फिलिस्तीन में पत्थर पर तराशा गया वक्त आज इस्तांबुल में अपनी हिफाजत का सफर जारी रखे हुए है। वक्त के साथ इंसान का रिश्ता बतदरीज ज्यादा

सिर्फ एक ही किस्म के प्रोटीन के जराए का इस्तेमाल फायदे के बजाय कई मसाइल का सबब बनता है। प्रोफेसर डॉक्टर अक्यूस मुमकिन नुकसानात की वजाहत करते हुए कहती हैं, अगर आप हर खाने में रोजाना सिर्फ हैवानी प्रोटीन के जराए इस्तेमाल कर रहे हैं तो अमराज कल्ब समेत मेदे और बड़ी आंत के कैंसर जैसे खतरात बढ़ जाएंगे। इसके साथ ही चूंकि आपके गजा में फाइबर की मकदार कम हो जाएगी, इससे आंतों के मसाइल पैदा होंगे और आपका मुदाफियती निज़ाम मनफी तौर पर मुतासर होगा। प्रोटीन का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल गुर्दों पर भी मनफी असर डालता है। प्रोफेसर डॉक्टर अक्यूज अपनी बात जारी रखते हुए कहती हैं, अगर आपको गुर्दे की कोई ऐसी बीमारी है जिसका आपको इल्म है या इल्म नहीं है और आप बहुत ज्यादा मकदार में प्रोटीन इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे आपके गुर्दों पर बोझ बढ़ जाएगा और यह सूरत हाल को मजीद खराब कर देगा। इसी तरह प्रोटीन जिगर में मेटाबोलाइज होती है, ये चीज आपके जिगर को भी हद से ज्यादा थका देने का बाइस बनेगी और अगर आप पहले से कोई अंदरूनी बीमारी आप में मौजूद है तो ये इसके खतरे को मजीद बढ़ा देगी। तो फिर हैवानी प्रोटीन बेहतर है या नबाती? प्रोफेसर डॉक्टर अक्यूस का जवाब वाज़ेह है, हमें हैवानी प्रोटीन की तरह नबाती प्रोटीन के ज़राए को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अपनी रोज़मर्रा की ग़िज़ा में हमें हैवानी और नबाती दोनों किस्म के प्रोटीन्स को जगह देनी चाहिए। नबाती प्रोटीन की हयातियाती इफादियत को बढ़ाने के लिए हमें इसे अनाज के साथ मिलकर इस्तेमाल करना चाहिए। यह अमीनो एसिड के पैटर्न को मुतवाजन बना देगा और जिस्म में उसकी इफादियत बढ़ जाएगी। अब आते हैं सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल की तरफ, रोजाना कितनी प्रोटीन काफी है? प्रोफेसर डॉक्टर अक्यूस आदादोशुमार बताती हैं, जब किसी शख्स की उम्र, कद, वजन और जिस्मानी हालत को मद्देनजर रखा जाए तो हम कह सकते हैं कि सेहतमंद बालिग अफराद के लिए रोजाना फी किलोग्राम वजन के हिसाब से 1.2 या 1.6 ग्राम प्रोटीन का इस्तेमाल काफी है। बच्चों के लिए मकदार थोड़ी मुख्तलिफ होती है। नशोनुमा पाने वाले छोटे बच्चों के लिए हम इसे फी किलोग्राम वजन के हिसाब से 2 से 2.5 ग्राम तक रख सकते हैं। ताहम किसी बीमारी की सूरत में या एथलीट्स के लिए ये सूरत हाल बदल जाती है और इसकी मकदार में इजाफा हो सकता है। खास तौर पर डाइटिंग करने वाले लोग पट्ठों को कमजोर होने से बचाने के लिए हर खाने में प्रोटीन को लाजमी शामिल करते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर अक्यूस इस बारे में कहती हैं, प्रोटीन को दिन भर के खानों में तकसीम करना अहम है, लेकिन ये कोई लाजमी उसूल नहीं है कि हर खाने में हैवानी प्रोटीन का होना ही जरूरी है। हमारे नबाती प्रोटीन के जराए जैसे चने, सफ़ेद लोबिया, हरी मसूर की दाल या अब प्रोटीन के जराए में शुमार होने वाले गिरीदार मेवे जैसे हेज़लनट, मूंगफली, अखरोट और बादाम भी हमें प्रोटीन फराहम करते हैं। जब हम उन्हें अपनी ग़िज़ा में शामिल करते हैं तो हम प्रोटीन की रोज़मर्रा की तकसीम को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप सिर्फ प्रोटीन हासिल करने की खातिर हर वक्त अंडे, सुर्ख गोश्त, मुर्गी या मछली खा रहे हैं तो यह सेहत के लिए ज्यादा खतरात पैदा करेगा। और प्रोटीन वाले दही और मशरूबात के बारे में क्या ख्याल है? प्रोफेसर डॉक्टर अक्यूस इस पर तायद भी करती हैं और इंतबाह भी देती हैं। जब तक हम प्रोटीन की रोज़मर्रा की मुकर्ररा मकदार से तजावुज़ ना करें, हम प्रोटीन वाले दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जो वर्जिश करते हैं। लेकिन अपनी ग़िज़ा में दही की पूरी ज़रूरत को सिर्फ प्रोटीन वाले दही से पूरा करना गलत होगा। हाँ, ये जिस्म में पट्ठों की बनावट में मदद करता है और पट्ठों के नुकसान को रोकने का असर भी दिखाता है, लेकिन अगर आप पहले ही ग़िज़ा से काफ़ी प्रोटीन हासिल कर रहे हैं तो उसकी कमी को इजाफी प्रोटीन वाले दही या प्रोटीन वाले मशरूबात से पूरा ना करें। प्रोटीन पाउडर के इस्तेमाल में भी एहतियात बरतें। अगर आप ग़िज़ा के ज़रिए मुनासिब मकदार में प्रोटीन ले रहे हैं तो प्रोटीन पाउडर से उसकी मदद करना लाजमी नहीं है। आखिर में आइए उन ग्रोहों का जिक्र करें जिन्हें खास तौर पर एहतियात करनी चाहिए। प्रोफेसर डॉक्टर अक्यूत दर्जा झेल इंतबाहात जारी करती हैं, जिगर के मरीजों में प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म खराब हो सकता है। प्रोटीन की ज्यादती खास तौर पर आखिरी मराहल में अमोनिया के जमा होने, हेपेटिक इंसेफलियोपैथी यानी जिगर की खराबी की वजह से दिमागी असरात और होशो हवास में तब्दीली का बाइस बन सकती है। इस तरह गठिया के मरीजों में खासतौर पर हैवानी प्रोटीन, सुर्ख गोश्त और कलेजी और मगज का इस्तेमाल यूरिक एसिड को बढ़ाकर दर्द के झटकों को तेज कर सकता है। अगरचे बुजुर्गों के लिए प्रोटीन अहम है, लेकिन उन्हें अपने गुर्दों के अफआल
اور پانی کے استعمال کے حساب سے اس کے ضرورت سے زیادہ استعمال سے بچنا چاہیے۔ نتیجے کے طور پر پیغام واضح ہے، پروٹین صحت کے لیے ناگزیر ہے، لیکن ہر اچھی چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ اپنے پروٹین کے ذرائع میں تنوع لائیں، اس کی مقدار کو متوازن رکھیں اور اپنے جسم کی حقیقی ضرورت پر کان دھریں۔ پوڈکاسٹ سننے کے لیے آپ کا شکریہ۔ ہمارے کسی دوسرے پوڈکاسٹ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔